सतगुरु होई दयाल तसरदा पूरी है, सतगुरु होई दयाल न कबहू झूरी है, सतगुर होई दयाल ता दुख ना जानी है, सतगुर होई दयाल ता हर रंग माणी है। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों नूं मानदे हुए जुड़ चुके हैं जी एक बार फिर खूबसूरत शाम खूबसूरत स्रोतों लई खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम रेडियो उडान जिंदगी जिंदाबाद ते चढ़दी कला की पहचान रेडियो उडान प्रभ संत दे नाल।

0: Talk530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: असली पंजाब वर का याद रखो 100 कैनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन या फिर कांटेक्ट कर सकते हो 9052304800 थे या ईमेल करो brampton cashandcarry2023@gmail.com थे। स्वाद दे मामले विच कॉम्प्रोमाइज कदे भी नहीं करना चाहिदा, इसलिए तो हाडे लई है विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। 1999 तो लेके ब्रैम्पटन नु सर्व कर रहे हन विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। लुत्फ उठाओ स्वादिष्ट पंजाबी खाने दा, बुफे डाइन इन टेक आउट केटरिंग लंच दे डिनर सारा कुछ है। स्वीट्स दे स्नैक्स दी वड्डी कलेक्शन भी है जो की तुहानु जरूर पसंद आएगी। ते फिर देर किस गल दी, अज ही कॉल करो 905-450-3333 ते। एड्रेस विलेज ऑफ इंडिया 114 कैनेडी रोड साउथ Brampton। ब्यूटी इंडस्ट्री दी दुनिया विच अपना करियर बनाउन बारे सोच रहे हो ता हो जाओ टेंशन फ्री। अमायरा एकेडमी हेयर एंड एस्थेटिक्स तुहाडे ऐसे करियर ते ड्रीम्स नु दिखाउन के सही राह, जो प्रोवाइड करदे हन सब तो बेहतरीन ते कंप्लीट कोर्स पैकेज पूरे कनाडा विच। हेयर स्टाइलिंग डिप्लोमा, मेडिकल एस्थेटिक डिप्लोमा, ए सब दे नाल नाल अमायरा एकेडमी अपने यूनिक ते सुपर सैटिस्फाइंग हेयर सर्विसेज एंड स्पा ले भी जाने जाते हन। हुणे कॉल करो 9053996110 ते और विजिट 114 कैनेडी रोड यूनिट 2 ब्रैम्पटन ओंटारियो।
2: ਪੰਜਵਾਂ ਮਹਾਨ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਮਈ 16 17 ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਮਈ 18 ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ,
3: ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫੇਅਰ ਗਰਾਊਂਡ 12942 ਹਾਰਡਡੇਕ ਰੋਡ ਕੈਲਟਨ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਦੇ ਸਰਮੌਰ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਅਨੰਤ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਲੇ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਬੀਹਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ। ਫੋਰ ਮੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਿੰਘ ਅਜੀਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 6474481000, 6474481000। ਸੇਵਾ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ2022@yahoo.com ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

गुरपुरे की सरणी उभरे कागज सगल सवारे हर जिन सिमरिया नाम आधारे ताप उतारिया सन गुरपुरे अपनी कृपा धार रहा सदा आनंद कर हो मेरे प्यारे हर गोविंद गुर राखिया वड्डी वड्याई नानक करते की सूरत महला पंजवा कृपाल स्वामी मेरे तित साचे दरबार सतगुर ताप गवाया पाई ठान पई संसार अपने जी जत आपे राखे जमहे कियो हटदार हर के चरण हृदय और तार सदा सदा प्रभ सिमरिए काटन हार रहा तिसकी सरणी उबरे पाई

आई पाई मन तन शीतल हो। सूरत अल्लाह पंजवा संत हो हर हर नाम ते आई, सुख सागर प्रभ विसरो नाही, मन चिंदियाड़ा पल पाई रहा। सतगुर पूरा ताप गवाया अपनी कृपा धारी, पार ब्रह्म प्रभ भय दयाला, दुख मिटया सब परवारी। सर्व निधान मंगल रस रूपा, हर का नाम आधारो, नानक पत राखी परमेश्वर, उधरिया सब संसारो। सूरत माला परिवार मेरा सतगुरु रखवाला हो, काल कृपा प्रभाग मेरा, हर गोविंद बाबा दरुआ रहा। सात संगत ते सब फल पाए, सतगुर कै बल जाए।

सफल कर मस्तक धारिया। सूरत महला पंजवा जी अजंत सब तिसके किए, सोई संत सहाय अपने से बकिया पे रात पूरर पई। पा ब्रह्म पूरा मेरा नाल गुर पूरा पूरी सब राखी, होए सर्व दयाल रहा

0: देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल डॉट सी ए पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400-5990 पर कॉल कीजिए। 9054567733 अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

0: भले संजोगा प्रभु पानी सब सुभाख्या गाव सुन हो पढ़ो नित पाई गुरपूरा पूरा किया रहा साचा साहेब अमित बढ़ाई भगत बचल दयाला संता की पैज रखदाया आद बिरद प्रतिपाला हर अमृत नाम भोजन रत पूजो सर्व बेला मुख पाव चरा मरा ताप सपना छोड़े गुरु गोविंद नित गावा
1: सुन लगे सुन के सोने।

पाला सूर महला पंजवा गए कले सुरोग सबना से कब अपना कृपा तारी आज पहर आराधा स्वामी पूर्ण काल हमारी हर जियो तू सुख संपत राख राख ले हो पाई मेरे को प्रभु अरदास प्रभु जो मांगो सुई सो पाओ अपने खसम परोसा कहो नानक।

भवति पातु भुजौ पातु प्रभाकरः करावब्जकरः पातु हृदयं पातु हनुमान् मध्यं पातु सुसप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सक्तिनी ऊरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे मे पातु मार्ताण्डो गुल्फौ पातु त्रिशाम्पतिः पादौ पातु दिनमणिः पातु मित्रोऽखिलं वपुः आदित्यकवचं पुण्यम् अभेद्य वज्रसन्निभम् सर्वरोगभयादिभ्यो मुच्यते नात्र संशयः।

पंच महान कवच सभी प्रकार के इसके नियमित पाठ सभी प्रकार के रोग और कष्ट पंचमुखी श्री हनुमान जी का चित्र यदि घर के प्रवेश द्वार पर लगाया जाए तो बड़ा ही मंगलकारी और आप श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। भक्तजनों।

0: विश्वचाराम नाशनम सर्व सिद्धिनम सर्व रोगहरम चैव सर्व संपत्तिदं शुभम भुक्ति मुक्ति प्रदं ऋणां सर्व सौभाग्य वर्धनम ऋण बंध विमोचन
1: बाधा सब हर करे सब काम सफल।

0: आप सभी श्रोताओं का घर से साहब में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है सभी को, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राम, जय मदद। और विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड की सोमवार की सभी शहरों में बहुत अच्छी अच्छी प्लानिंग की गई है, बहुत सारी इवेंट्स हो रही हैं, आप जरूर जाइएगा, बच्चों को साथ ले जाइएगा, अपने फैमिली के साथ, बहुत सारे लोग घूमने कहीं ना कहीं निकले हुए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और आइए, इसी के साथ आपका पहला लॉन्ग वीकेंड है समर का, इस साल का 2026। तो आइए, अब अगर आपने अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया लेके आना है, बढ़िया टीवी लेना है, बढ़िया आउटडोर का आपको बारबेक्यू चाहिए, जहाँ फिर बढ़िया बढ़िया अपने आउटडोर का सोफा भी चाहिए, तो ये सारा सामान आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी गोल्फ में है। और उनकी मंथली स्पेशल देखने के लिए आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए, और अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर आप उनको कॉल कर सकते हैं, 905-799-0045 पे आप उन्हें कीजिएगा। और फिर आपने अभी शादियां होने वाली हैं, बर्थडेज, एनिवर्सरीज, कोई भी मौका है, आप सोने के गहने लेना चाहते हो, सोने की बार्स लेना चाहते हो, डायमंड अप टू 70% ऑफ आपको चाहिए, तो आप जाइएगा अलमदीना ज्वेलर। अलमदीना ज्वेलर आपके लिए एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है मोटर में, तो और जानकारी के लिए आप अपने ऑर्डर बुक करने के लिए उनको कॉल कर सकते हो, 905-673-0100-905-673-0100। और अभी आपने घर खरीदा है, आपको मूव तो होना है, मूविंग के लिए आपका कनाडा भर में मदद करती हैं और बहुत हिफाजत से आपके सामान को ले जाते हैं एच के मूवर्स, आप उनको कॉल कीजिए, आज ही अपना मूविंग के लिए ट्रक बुक कर सकते हो, तो 416-524-6704 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं, तो एच के मूवर्स, और आपका कोई भी बड़े बड़े सामान को भी, आपके कारें और जो भी आपका सामान होगा, बहुत आपके लिए हिफाजत से उनकी पूरी टीमें अलग अलग हैं, तो वो आपके सामान को बड़े अच्छे तरीके से मूव करते हैं, तो एच के मूवर्स 416-524-6704 एच के मूवर्स।
1: यहाँ से आपको ढाका, चुन्नी, मेहंदी, जागो, मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलिनी ड्राइव, यूनिट 9 और 10, ब्रैम्पटन, टेलीफोन 905-799-9400।
0: जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो आइए, अब आपको एक बढ़िया सा गीत सुनाते हैं, पंजाबी का गीत, ठीक है जी। तो मिस पूजा ने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हैं आपके लिए, तो आज उन्हीं का गीत आपको सुनाते हैं, और उम्मीद रखूंगी आपको पसंद आएगा। अब अगर आपने ट्रक रिपेयर करवानी है और ट्रक रिपेयर के लिए आपको जाना होगा बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर, 715 रोड मिसिसागा में मौजूद है, और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लो 905-625-0055, 905-625-0055 पे आप कॉल कर सकते हो ट्रक रिपेयर के लिए, बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर। और अब आपके लिए बहुत सारे

जी हाँ, तो एक मैसेज से आप जी हाँ, तो पंजाबी का गाना एक के बाद दूसरा लग गया, तो आपके लिए बढ़िया सा गाना सुनाना चाहती हूँ, सोनी पावला का है ना, तो आपको जरूर सुनाती हूँ। बस अभी आपका, अगर आपने किचनर वाटरलू गोल्फ में घर खरीदना है, बेचना है, तो आप नसीब फ्रेंड को कॉल कीजिए 519-546-1260 पे। आप नसीब फ्रेंड को कॉल कर सकते हैं, अपने किचनर वाटरलू गोल्फ में कोई भी किसी किस्म का भी आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप उनको कॉल कर सकते हो। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी, आपको टोरंटो के आसपास के इलाके में घर खरीदना है, बेचना है, तो आप नसीब फ्रेंड को कॉल कीजिएगा। नसीब फ्रेंड आपके लिए बढ़िया तरीके से आपको सेवाएं देंगे। तो अब अगर आपने कहीं पे भी किसी तरह का भी आपको आपने किसी किस्म की भी आपको आपने फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर खरीदना है, और अभी समर आ गई है, तो आपने बढ़िया बढ़िया अपने घर के लिए सोफा, फर्नीचर लेने हैं, या फिर आपने अपने घर के लिए बढ़िया सा टीवी लेना है, लेटेस्ट मॉडल का टीवी लेना है, गिफ्ट लेके देना है किसी को, किचन की गैजेट्स आपको चाहिए बढ़िया लेटेस्ट, और आउटडोर फर्नीचर चाहिए, वन ऑफ ए काइंड घर का फर्नीचर चाहिए, तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाएं। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन गोल्फ में। उनकी स्पेशल देखने के लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाइए। अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, 905-799-0045 पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपने मूव होना है, एचके मूवर्स आपके लिए कनाडा भर में मूव होने में आपकी मदद करते हैं, तो आप और जानकारी के लिए अपने ट्रक बुक करने के लिए 416-524-404 पर कॉल कीजिए, 416-524-6704। अब आपको सुनाते हैं सोनी पावला का ये गाना।

0: जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में।
1: सिर में शक्कर पारे मत।

0: ਸਮੋਸਾ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਐਕਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ $4.75 ਪਰ ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ। ਬੇਸਣ ਪਿਸਤਾ ਰਸਗੁੱਲੇ ਔਰ ਜਸਟ $5 ਹਰ ਪਾਉਂਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਸਟਮਰਸ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸੇਲ 2026। 100% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੇਡ ਟਾਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਵੀਟਸ ਹੁਣ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। 2 ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 1850 ਐਲਗਨ ਰੋਡ, ਈਟੋਬੀਕੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-213-1135।
1: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब आपको सुनाते हैं बहुत ही बढ़िया सा गीत गुरदास मान जी का। जी हाँ, गीत आपको सुनाएंगे आज, बढ़िया बढ़िया पंजाबी के गीत सुनते हैं। लॉन्ग वीकेंड है तो आपका कुछ लोग अभी कहीं जा रहे होंगे या कहीं से आ रहे होंगे, तो काम से आ रहे होंगे कई लोग, तो शिफ्टें करते हैं, तो आप इंजॉय कीजिएगा सॉन्ग गुरदास मान जी का। गुरदास मान जी के तो जितने भी गाने हैं सब ही कमाल के हैं। कोई भी गीत आपके लिए सुना, आपको सुना दिया जाए। मेरी कोशिश है, उनका पहला जो गाना था छल्ला, वो बड़ा पहले उस उन दिनों में बड़ा सभी को अच्छा लगता था। वो टीवी पे भी आते थे तो सभी उनसे वही गाना सुनना चाहते थे छल्ला। तो आइए आपको वही गीत गुरदास मान जी का सुनाएंगे। तो अगर आपने किसी किसी को भी खाना आपने लेना है या फिर ऑर्डर करना है, न्यूली रेनोवेटेड है न्यू इंडिया स्वीट्स है रेस्टोरेंट आपके लिए, ब्रिटानिया एंड क्रेडिट व्यू पे मौजूद है, तो वहाँ पे आपके लिए उनका खाना बहुत ही बढ़िया होता है, स्वादिष्ट होता है। आपको कोई भी खाना किसी किस्म का भी ऑर्डर करना है, लाइव कुकिंग करवानी है किसी इवेंट के लिए, किसी पार्टी के लिए, तो उसमें भी आप बहुत बढ़िया आपकी वहाँ पे खाना बढ़िया आपको बना के देंगे। तो आप न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट को कॉल कीजिएगा 905-814-1730 905-814-1730। तो आपके लिए अभी मैं देख रही हूँ कि चलो ये आपको सुनाते हैं कि दुनिया में अभी उन्होंने ये एक बड़ा सवाल उठाया था कि की बनो दुनिया का, कि दुनिया में हर तरह के अजूबे हो रहे हैं अभी, तो आपके लिए कितना एडवांस हो गया है। एआई ने तो कमाल ही कर दिया है हर एक चीज़ में, हर एक बिजनेस में बहुत सारी तब्दीलियाँ एडवांसमेंट कर दी है।

0: जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में, और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। तो उम्मीद रख रही हूँ आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। आपको फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर बढ़िया लेना है और बढ़िया टीवी लेना है लेटेस्ट मॉडल, तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए। लॉन्ग वीकेंड है, शॉपिंग करिए वहां पे जाके अपने घर के लिए, और उनकी स्पेशल देखने के लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाइए, और जानकारी के लिए उनको कॉल कीजिए 905-799-0042, 905-799-0045। अभी तक 30 साल का आपने टैक्स नहीं भरा है, आपको HST फाइल करनी है, बिजनेस की पर्सनल जहाँ टैक्स भरना है, तो आप गुरप्रीत रोडे को कॉल कीजिए 416-302-8835 पे कॉल कर सकते हैं। टोरंटो के आसपास में आपने घर खरीदना बेचना है, आप खुशवंत सिंह बैंस को कॉल कीजिए 416-670-1313, 416-677-1313 पर आप खुशवंत सिंह बैंस को कॉल कर सकते हैं। आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार। तो अब आपके लिए कौन सा गीत सुनाया जाए? सो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग, ओल्ड इज गोल्ड।
1: शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए।
0: जो जो ओल्ड इज गोल्ड सिलेक्शन है उसी में से ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने से ये गीत आपके लिए सुनाते हैं।
2: दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो
0: तेरे घर के सामने।
2: दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो।

पर न तुम गिराना आंसू के तरह निगाह से, प्यार की ऊंचाई इश्क की गहराई पूछ लो हमारी आह से। आंसू छू लिया प्यार का राज सुनो।

जी हाँ, एक और फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। रात को भी हम आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे 10 से 11 बजे तक। तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति पर है। मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ और रात को आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे, अच्छे अच्छे गीत आपको सुनाएंगे और इसी तरह हम हमारा जो सफर है एक घंटे का मजे से गुजरेगा। तो बहुत सारे शहरों में फायरवर्क्स होगा, तो वीकेंड में खूब एंजॉय कीजिएगा, पर प्लीज डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, बी सेफ। तो नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सुबह का भला, हैव अ वंडरफुल एंड ए सेफ लॉन्ग वीकेंड।

प्यार का सोना प्रेम नगर से लाके तेरी सुंदर छवि बनेगी दोनों चीज मिला के।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स

0: तो संतोष जी की आवाज़ क्या है?
1: सरदूल सिकंदर।
0: सरदूल सिकंदर जी?
1: हाँ जी
0: हाँ जी
1: हाँ जी हाँ जी
0: सरदूल सिकंदर
1: जी।
0: श्योर है?
1: हाँ जी पक्का।
0: गांव वालों मैं आपसे पूछता हूँ, गांव वालों सारे ने सुनिया होया जिहड़े स्वर्गवासी सरदूल सिकंदर संतोष जी कहिंदे उहनां दी आवाज़ है। तुहानूं पता जे किसे नूं कीदी आवाज़ है कि 905-673-33-37। संतोष तुसीं हमेशा सही जवाब किवें देंदे हो? राइट
1: जी, मैं बहुत इंटेलीजेंट हां।
0: 905-673-33-37।

0: गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, वेलकम टू डेव टाडला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादी उम्मीद करते हैं कि तुहाडा अज्ज दा दिन अच्छा गुजर रहा होगा। साडी कोशिश रहेगी एक बजे एक घंटा होर तुहाडे लई बहुत सारे पैसे बचाउण दा इंतजाम करिए, चाहे ब्रैम्पटन टीवी अपलायंसेस होए जां फिर अपने ग्रैंड फर्नीचर वाले साडे सुख साहब होण, पैसे दी बचत कीती जाएगी। सुल्तान जी पुराना स्वागत है।
1: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया।
0: सुल्तान जी लोंग वीकेंड है
1: जी,
0: इह क्वीन विक्टोरिया दा जन्मदिन सी।
1: हां जी,
0: मई 25 नूं योगदान पाओ क्वीन विक्टोरिया दे जन्मदिन ते। तुसी की स्पेशल दे रहे हो?
1: विक्टोरिया डे लोंग वीकेंड जेड़ा जी, एदे विच जेड़ियां प्राइसेस है असी ओ मदर्स डे वालियां प्राइसेस जेड़ियां कंपनी को दोबारा रिपीट करवाईयां। ओदी रीजन ए है कि जिद्दां हमेशा असी कहने कि मदर्स डे भी साल च एक वारी आउंदा ते मदर्स डे दियां प्राइसेस भी साल च एक वारी ही दित्तियां जांदियां, पर चंगी गल ए होई कि राइट आफ्टर मदर्स डे विक्टोरिया डे लोंग वीकेंड आ गया ते कंपनी एग्री कर गया कि इनू असी एक्सटेंड कर दईए। सो इस करके लोएस्ट प्राइस गरंटेड अज तुहानू लैके दे रहे हैं। जे आपां गल करिए ना जी काउंटर टॉप, काउंटर टॉप किचन अपलायंसेस ते निंजा क्रिस्पी, निंजा एक्चुअली प्रीमियम ब्रांड है जी काउंटर टॉप किचन अपलायंसेस दे विच, ते ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेस ने निंजा क्रिस्पी एयर फ्रायर जिहड़ा कि टू ग्लास कप्स दे नाल है, टू ग्लास पॉट्स दे नाल है, $300 वाला सिर्फ अद्धी प्राइस ते $149 च दे रहे हैं। पर है साडे कोल सिर्फ 4 पीस इन स्टॉक है, 4 लकी कस्टमर कैन गेट इट राइट वे। सिर्फ $149 च निंजा क्रिस्पी एयर फ्रायर लेना है ते राइट वे कॉल करके ते अपना होल्ड करा लो। 905-450-2828 नंबर है। जदों इहो जिहियां वधिया वधिया प्राइसिस मिलनियां फिर बिग स्क्रीन टीवी दे उपर,
0: हाँ जी
1: 85 इंच सैमसंग दा टीवी है जी,
0: 85 इंच सैमसंग डब्बे च बंद,
1: फैक्ट्री सील्ड ब्रांड न्यू डब्बे च बंद। वैसे दी सेल प्राइस सिगी जी $1499, रेगुलर प्राइस हैगी एदी $1800, पर ओनली एंड ओनली विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड $999।
0: लो जी
1: सिर्फ $999 है, 18 मई मंडे तक अवेलेबल है। जे तुसी ट्यूजडे लवोगे अज ही दस देना कि ट्यूजडे आले दिन ये तुहानू $1500 का मिलना।
0: सैटरडे संडे मंडे ये तीन दिन प्राइस है,
1: तीन दिन ही प्राइस रहेगी $999, 85 इंच ते $999, पे भी 6 महीने च करना।
0: हाँ, ब्याज कोई नहीं,
1: इंटरेस्ट कोई नहीं, डिलीवरी कोई नहीं चार्जेस, फ्री डिलीवरी भी है।
0: हाँ जी,
1: सो पहुंचना है तुसी बिग सेविंग्स बिग स्क्रीन दे उपर ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेस 905-450-2828। 55 इंच टीवी चाहिदा नो प्रॉब्लम चक्को $399 दा, 65 इंच टीवी चाहिदा नो प्रॉब्लम चक्को $699 दा।
0: मुड़ के फिर आयो 50 इंच वाला किन्ने दा जी?
1: 50 इंच वाला तां $349 जी,
0: ते
1: 55 इंच वाला $399,
0: ते 60
1: 65 इंच वाला 60 नहीं हुण बनदा जी,
0: अच्छा
1: 65 इंच वाला $699 अप्रूवल ली है सैमसंग कंपनी को, $3500 वैसे दी प्राइस है, सेल ते $2799 दा वेच दे रहे हैं जी, $1999 98 इंच सैमसंग फ्री डिलीवर करवाना है ते 6 महीने च पे करना है। ते फिर राइट वे पहुंचना किथे जी? 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट जस्ट ईस्ट ऑफ चंकूजी ऑन बोवेड है ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेस, या फिर brampton appliances.com साडी वैबसाइट तो डायरेक्शन ऑफ द स्टोर भी लै सकते जी। 905-450-2828 नंबर है, सिर्फ कॉल करके नाम ते नंबर दे के, चाहे तुहानू निंजा क्रिस्पी दा एयर फ्रायर चाहिए, चाहे तुहानू टॉप लोड वाशर एंड ड्रायर चाहिए, चाहे तुहानू 32 इंच तो लग के 98 इंच तक टीवी चाहिए है, सिर्फ तुसी कॉल करके अपना नाम ते नंबर दे के होल्ड करा लेना ते फिर शोरूम च आके चेक करके कंपेयर करके फिर डिलीवरी स्केजुअल करियो, क्योंकि पेमेंट तो तुसी 6 महीने च ही करनी है। ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। 905-450-2858-59 ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਏਅਰ ਫਰਾਇਰ ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਓਨਲੀ $300 ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਪ੍ਰਾਈਸ 149 ਦਾ 905-450-2858।
0: ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਬੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ,
1: ਹਾਂਜੀ,
0: ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ
1: ਜੀ
0: ਗਲਾਸ ਪੌਡ ਆ, ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਇਰ ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਉਹ ਪਲੇਟ ਚ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ।
1: ਡਾਇਰੈਕਟ ਔਰ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਵਾਸ਼ ਤੇ 15 ਮਿੰਟਸ ਫਾਸਟਰ ਦੈਨ ਅਨਦਰ ਏਅਰ ਫਰਾਇਰ। ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੰਜਾ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਪ੍ਰੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 7 ਜਾਂ 8 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੰਜਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅੱਧੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਨਿੰਜਾ ਜੂਸਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜੀ।
0: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪਿਆ ਸੀ
1: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਚ ਕੈਰਟ ਦੇ ਜੂਸਿਸ ਹੈ,
0: ਹਾਂਜੀ
1: ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੂਸਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੈਰਟ ਵੀ ਐਪਲ ਵੀ
0: ਸੰਤਰੇ
1: ਹਾਂਜੀ ਈਵਨ ਔਰੰਜਸ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੂਸ ਕੱਢੋ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ 2 ਫਿਲਟਰ ਇੰਕਲੂਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵਿਦ ਪਲਪ, ਇੱਕ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਪਲਪ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦ ਪਲਪ ਜੂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦ ਪਲਪ ਵਾਲਾ ਫਿਲਟਰ ਲਗਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦ ਪਲਪ ਰਾਈਟ ਵੇ ਫਰੈਸ਼ ਜੂਸ
0: ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਆ, ਪਲਪ ਵਾਲਾ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪਲਪ।
1: ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ $400 ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ 199 ਚ ਨਿੰਜਾ ਜੂਸਰ ਵੀ ਅੱਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਡੇ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੋਵੇਡ ਐਂਡ ਚੰਕੂਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜੀ, 905-450-2858। ਚੱਕ ਲਓ, ਚੱਕ ਲਓ, ਡੀਲ ਹੈ ਤੇ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਣੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਸੋਲਡ ਆਊਟ।
0: ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਮੁਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਓ।
1: 905-450-2858 905-450-2828

आदाब नमस्कार प्यार सत्कार दे नाल सत श्री अकाल एंड अ वेरी वेरी वेरी गुड इवनिंग वापस आ गए अजी वीकेंड तुसी इंजॉय कर रहे हो बल्कि ये तो लोंग वीकेंड है यानी कि एक होर छुट्टी है सो प्रोग्राम नूं तुसी ट्यून इन कर चुके हो बहुत शुक्रिया जी रेडियो अंदाज दे विच मैं थोड़ी होस्ट परम हाजिर हो चुकी हाँ मेरे वालों सारे सारे लिसनर्स नूं सारे परिवारों नूं बड़े अदब सत्कार दे नाल सत श्री अकाल बहुत सारा प्यार ढेर सारा सत्कार वेलकम जी आयां नूं खुशामदीद एंड स्वागतम

में है इकरार तो इनकार है लब पर, उस शोख की देखी है हया और तरह की। जब दर्द मेरे दिल में नहीं है और तरह का, ऐ चारा अगर क्यों है दवा और तरह की। जिक्र दर्द दिल का चलने लगा है तो ये दर्द ना तो आंखों से बाया होता है और ना ही लिखने से। हाँ, मगर जुबान कभी कभार बयां कर देती है, जैसे लता मंगेशकर ने अपनी मखमली आवाज में इस गजल को कुछ यूं कहा है।

0: दिया वो दर्द ओ बेदर्द तूने, दिया वो दर्द ओ बेदर्द तूने, कोई जिस दर्द का चारा नहीं है, गिला हम क्या करें तेरी जफा का, मोहब्बत में गिला होता नहीं है। बात फिर दर्द की चली है तो दर्द दिल के टूटने पर होता है, जैसे फूल को टूटने पर होता है। फूल या तो खुशी को बयां करते हैं और कुछ फूलों के रंग दर्द को। कुछ ऐसा ही अर्ज किया है गुलाम अली ने अपनी इस उम्दा गजल में।
1: हीट वेव आ गई
2: की गल एनी जल्दी।
1: हाँ जी, ते पता है इसका की मतलब?
2: सनस्क्रीन, हाइड्रेशन, एनका ते सेविंग्स भी, क्योंकि होलसेल क्लब हीट वेव आ गया है। होने लगो 3.78 लीटर फ्रैंक्स रेड हॉट सॉस सिर्फ $14.99।
1: ओहो, उत्ते तो कीमत 15 जुलाई तक लॉक ने।
3: ओ भाई, इतना गर्मा गर्म डील है।
2: कोई मेंबरशिप फी नहीं। और जानकारी लाई स्टोर विच वेखो जा wholesaleclub.ca ते जाओ।
4: होलसेल क्लब, होल लॉट ऑफ वैल्यू।
5: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.